0: हैं।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अंजलि जी ग्रामीण कारीगर अपने उत्पादों को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों कि बांस की कहानी खेत से शुरू होकर कारीगर के हाथों तक पहुंचती है और फिर बाजार तक जाती है। इस पूरी यात्रा में प्रकृति, संस्कृति, श्रम और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसी कारण से बांस को केवल पौधे के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, कारीगर की कला का आधार है, किसान के लिए संभावित आय का साधन है और महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यमिता का अवसर है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की दिशा में हमारे लिए एक उपयोगी संसाधन भी है।
1: बिल्कुल कशिश, बांस हमें यह भी याद दिलाता है कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था गांवों को अपनी जरूरतों के लिए अधिक सक्षम बना सकती है। गांव में उपलब्ध संसाधन, गांव के लोगों का हुनर और स्थानीय बाजार, इन तीनों को जोड़कर छोटे स्तर पर कई तरह की आर्थिक गतिविधियां विकसित की जा सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए प्रशिक्षण, सही जानकारी, समूह में काम करने की सोच और बाजार से जुड़ने के अवसर महत्वपूर्ण होंगे। श्रोता साथियों, इस दिशा में युवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
0: जी हाँ,
1: युवा पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक सोच के साथ जोड़ सकते हैं, वे नए उत्पादों की जानकारी ले सकते हैं, डिजाइन में बदलाव कर सकते हैं और डिजिटल माध्यमों से अपने गांव में बने सामान को दूर पहुंचा भी सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस तरह परंपरा केवल यादों में नहीं रहेगी बल्कि बदलते समय के साथ आगे बढ़ती रहेगी।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, महिलाओं के लिए भी यह क्षेत्र अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: सामूहिक रूप से काम करने पर महिलाएं उत्पादन से लेकर पैकिंग और बिक्री तक अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं। इससे घर और गांव के स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।
0: जी हाँ,
1: और पर्यावरण की दृष्टि से हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी प्राकृतिक संसाधन का लाभ तभी लंबे समय तक श्रोता साथियों लिया जा सकता है जब उसके क्षरण और पुनः उत्पादन का ध्यान रखा जाए।
0: जी हाँ,
1: इसलिए बांस के साथ भी यही सोच जरूरी है, जितना उपयोग करेंगे उतना ही उसके संरक्षण के लिए सोचेंगे भी।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बांस केवल जंगल में उगने वाला पौधा नहीं, ये गांव की अर्थव्यवस्था की ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: ये कारीगर के हाथों की कला है साथियों, ये हमारी लोक संस्कृति की पहचान है, ये प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश है और रोजगार की नई संभावनाओं का भी आधार है।
1: जी जी,
0: आज आवश्यकता बस इस बात की है कि हम बांस को केवल परंपरा के रूप में न देखें बल्कि उसे आधुनिक अवसरों की तरह जोड़ें।
1: जी जी,
0: किसानों को बाजार से, कारीगर को तकनीक से, युवाओं को उद्यमिता से और बांस को टिकाऊ पर्यावरण विकास से जोड़ना होगा। जब खेत में बांस उगेगा अंजलि जी, कारीगर के हाथ में हुनर खिलेगा, गांव के रोजगार बढ़ेंगे और बाजार में पर्यावरण अनुकूल उत्पाद पहुंचेंगे, तभी बांस की वास्तविक क्षमता सामने आएगी। इसलिए श्रोता साथियों, अगली बार जब आप बांस का पौधा देखें तो उसे केवल एक हरे पौधे के रूप में न देखें, उसके भीतर हमें संस्कृति, कारीगरी, रोजगार, पर्यावरण और भविष्य की संभावनाएं दिखाई देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बांस सिर्फ पौधा नहीं, संस्कृति की पहचान है, हमारे रोजगार का आधार है और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है।
1: बिल्कुल कशिश, पर्यावरण की दृष्टि से हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। किसी भी प्राकृतिक संसाधन का लाभ तभी लंबे समय तक लिया जा सकता है जब उसके संरक्षण और उसके पुनरुत्पादन पर ध्यान दिया जाए। हमें अपने गाँव में ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें बांस की पारंपरिक उपयोग और कारीगरी का अनुभव है। उनके अनुभव को दर्ज किया जा सकता है, बच्चों और युवाओं को सिखाया जा सकता है और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि कई बार किताबों में न मिलने वाला ज्ञान हमारे अपने गांव के किसी बुजुर्ग के अनुभव में छिपा होता है। इसलिए श्रोता साथियों, हम बांस को केवल बाजार में बिकने वाली वस्तु की नजर से न देखें, इसे हमारी मिट्टी, हमारे लोगों के हुनर और हमारी स्थानीय पहचान से जोड़कर देखें। जब किसी कारीगर के हाथों से बनी वस्तु हमारे घर पहुंचती है तो उसके साथ केवल एक सामान नहीं आता बल्कि उसके पीछे मेहनत, अनुभव और पीढ़ियों से चली आ रही कला भी हमारे पास आती है।
0: बिल्कुल,
1: लिबास का संरक्षण केवल पौधे बचाने का काम नहीं है, ये एक ओनर को बचाना, एक परंपरा को आगे बढ़ाना, स्थानीय रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की सोच को कायम रखने का प्रयास भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज से ही जब भी आपको अपने आसपास आसपास दिखाई दे तो उसे सिर्फ एक हरे पौधे की तरह देखकर आगे मत बढ़ जाएं। एक पल रुकिए, सोचिए कि इसके भीतर कितनी संभावनाएं हैं, कितने लोगों की मेहनत इससे जुड़ सकती है और हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे क्या सीख सकती हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन कशिश उसकी असली कीमत तब समझ आती है जब हम उसका उपयोग करने के साथ उसकी देखभाल करना भी सीखते हैं।

0: तो कह सकते हैं कि बांस की हरियाली रहे, कारीगरों की कला रहे, गांव की पहचान रहे और आने वाली पीढ़ियों के हाथों में यह हुनर बना रहे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को हमारे कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को
0: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपके फरमाइश की गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है खंडवा मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत की बोल है ये गलिया ये चौबारा। इस गीत की फरमाइश करता है बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी जिखरा डावर। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं शेख शहीद रही अनस भाई। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, बीबी वामिका वानी जी थांदी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वासी अब्दुल गफार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही है सोहन जोशी। इस गीत के अनुरोध करता है खंडवा मध्य प्रदेश से बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी जिखरा डावर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डी किसरो, रोजी डी किसरो, पर्ल डी किसरो, विलिस डी किसरो। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही ये गलिया ये चौबारा। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल ही आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानू, एलिजा नायब, लड्डू जी। इसे भी जुड़ना चाह रही है गंजरवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम जी अंसारी। इसे भी जुड़ना चाह रही है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिम्पल डिम्पल, मीनाक्षी निशा और तुलसी जी गोस्वामी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते ही फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल हैं आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोपर गांव से। फिल्म का नाम है खिलाड़ी, गीत के बोल ही वादा रहा सनम हो। इस गीत की फरमाइश करता है सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, श्रद्धा मालोदी, मानसी मालोदी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस सिंह राज। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है खिलाड़ी और गीत के बोल ही वादा रहा सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत यूपी से। फिल्म का नाम है दुश्मनी। गीत के बोल हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शिंदे, प्रतिभाजी गुड़ाने। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से जुड़ रही हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहीजी मलिक। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकरण शाह, कुशल शाह, नीतीश शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। इसे भी जुड़ना चाह रही अमरावती से हीरामन शिंदे और सिद्धार्थ जी गोड़ाने। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दुश्मनी, फिल्म का नाम है दुश्मनी, गीत के बोल हैं कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन, इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरा प्यार भी तू है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए साथियों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत के बोल ही बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है।

निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बेबी आलिया, आयुन बाबू और भी श्रोता साथ जुड़ना चाह रहे हैं। पटिया कला दुर्ग से संजय कुमार शाहू, सुजिता शाहू, शशांक शाहू, सीमाजी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं शिवानी चौक कटनी से अनिल ताम्रेकार, अमर ताम्रेकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रेकार, रंजन रजक, सजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय गोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना, हनी, यश और सोनिया जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं भेड़शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, जयश्री मेलेत्री, राम निवास अग्रवाल, धनजय पिट्टू, पीपी कुलेश जी। इस गीत के अनुरोध करता है नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगली, सोपान इगली, राजकुमार खर्ची, आशीष मेहकर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत के बोल हैं बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, अभी हमने कुमार सोनू जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है कब तक चुप रहोगी, गीत के बोल ही मितवा भूल न जाना। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है हीरा मणि वर्मा, पारेश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं लाहौरा से, डोमेंद्र नेताम, गणेश्वरी नेताम, चंचल जी नेताम, कमलेश नेताम और माहिर नेताम। पलारे छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं नीतीश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग, अनुराग जी और कृष्णा देवगाना। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, ईशान जी चिपा, पूजा परिहार जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन, सोगा मगरलोड जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मितवा भूल न जाना। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। दोस्तों, फिर से जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला सुबह 11 बजे से हमारा आपके साथ बना हुआ था, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो साथियों, फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही जारी रखते हुए मैं बढ़ना चाहूँगी फिर से अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया यवतमाल से। फिल्म का नाम है प्रेमी। गीत के बोल हैं तू पागल प्रेमी आवारा। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, आपको बताना चाहूँगी मंजू लोखंडे, रामहरि लोखंडे, सूरज लोखंडे, सुरमात लोखंडे जी और भी श्रोता साथी मधुबनी बिहार से हैं, शाबिर परवाना, साहिद अली, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी, साजिद अली जी। पतरिया छत्तीसगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार नेताम, कुसुम नेताम जी। जाखोद राजस्थान से हैं शंभू।

खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक। उत्तराखंड से जुड़ना चाह रहे हैं ताजुद्दीन अंसारी, गुलाम शाबी राही, मेहराज जहां। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से, सैयद मसूर, साइना अक्सा, नजमा, आफिया इब्राहिम, सद्दाम जी। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाड़ोकुल मल्होत्रा, ननक चल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, डुक्कू सिक्का, भाविका सिक्का जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तू पागल प्रेमी आवारा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मारवाड़ बिलड़ा राजस्थान से। फिल्म का नाम है दोस्तों वीर जारा, गीत के बोल हैं आया तेरे दर पर दीवाना। फरमाइश करता जोड़ना चाह रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी जी। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक, सचिन शर्मा। कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश चंदन, संतोष और पांडुरंग कुमार जी। लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्परा, ऋषभ मरावी जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं आया तेरे दर पर दीवाना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश गीत की ओर। अगले गीत को सुनना चाह रहे हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सजानन मंदुरकर, कुमार गुरु मंदुरकर, डाबकी रोड अकोला से। इन श्रोता साथियों की फरमाइश है, आपको बताना चाहूँगी मैंने प्यार किया फिल्म का गीत कबूतर चा। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। दुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी गिरडीह झारखंड से, मोहम्मद यासिन अनजान, सामे नवाज, असन नवाज, बाबू ऐत, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना मोहम्मद केफ अंसारी जी। अमरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे, कार्तिक किटे, भाविका किटे, समस्त किटे परिवार सदस्य गण। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कबूतर चा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है नादुरा से। फिल्म का नाम है साथियों कच्चे धागे, गीत के बोल हैं इस शाने करण का क्या कहना। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं संतोष वसाने, उषा वसाने, सिगर कटक, ऋषिकेश वसाने, सागर कटक जी नासिक से हैं, विशाल कवली, सोनाली कवली, समर्पण कवली, भक्ति कवली जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा जी। जुड़ना चाह रहे हैं बोरखेड़ा पित्रा मल से हैं विनोद मुड़न, देहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह परमार, दीक्षा कुश मुड़त जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, लड्डू देवी का चौधरी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं इस शाने करम का क्या कहना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: नवाजता है जो सबको

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगले फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया जज्जर हरियाणा से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बताना चाहूंगी। गीत के बोल है ए दिले नादान। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया जी, और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं येताला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरदे, परेश सुरोशे, मायरा सुरोशे जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं ए दिले नादान।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, आपको बताना चाहूंगी, नई दिल्ली टैगोर गार्डन से। फिल्म का नाम है दोस्तों लूटमार। गीत के बोल है जब छाए मेरा जादू। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा। इसी बीच आकोर से जुड़ना चाह रहे हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डाबे राव जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, प्रणय कुमारी प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे, प्रतिभा गुणाने जी अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जेवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, पवे जैन, अंशिका जैन। गंजुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुअंसारी, कलीम अंसारी जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जब छाए मेरा जादू। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है डापी पारा कोरपा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मैं आपको बताना चाहूँगी चलते चलते। गीत के बोल हैं सुनो ना सुन लो ना। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जय मरकाम, जागेंद्र गजेंद्र मरकाम, ममता मनीषा सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह सहोदरी भाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी जी। इसी बीच जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, प्रशाली पूनम गगनेजा, विशाल और प्रिया दिशानी निमित आहूजा जी। उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहित बलबीर सिंह जी। हमारे साथी जुड़ना चाह रहे तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुश्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। छत्तीसगढ़ से और भी साथी जुड़ रहे हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छनुला श्रीवास और रंजन साहू जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं आपको बताना चाहूंगी चंदुलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू युगित श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी जुड़ रहे हैं सोहन जोशी, पेहेश नवाड़कर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गंजुडवारा से एम शमशुल कमर राय, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुंसारी, कलीम अंसारी जी। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आसमा अंसारी, रवि इंद्र जी, पंजाब रोमटके जी, ओची श्रीवास, रविंद्र मोहनदास जी, राज शर्मा, दिनेश काली, योगेंद्र यादव जी, पूनम कौर जी, गनुलाल रज्जक जी, छोटू साहू, रविंद्र सिंह छाबड़ा, शिव प्रसाद देवदास जी, बलगण वर्मा, जश्मी देवी जी, माखन वर्मा, रमेश चंद्र जी, दुर्गेश कुमार जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुनो ना सुन लो ना। आपको बताना चाहूँगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की इस सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए। और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागर रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीवाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं। दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागर रेडियो 90.8 FM।

0: सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुए।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुए।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
1: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि हम अलग तरीके से सपने देखे युवा साथी, ताकि छोटी बस्तियां भी तारों से चमक उठे।
1: बिल्कुल
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सपना देखना आसान है। हर युवा के मन में किसी न किसी रूप में सपना होता है। कशिश, कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई उद्यमी तो कोई खिलाड़ी, तो कोई अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाना चाहता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे सपने सिर्फ हमारे अपने लिए हैं? क्या सपना सिर्फ इतना है कि मैं आगे बढ़ जाऊं? या सपना ये भी हो सकता है कि मेरे साथ मेरा गांव आगे बढ़े, मेरे साथ मेरी बस्ती आगे बढ़े, मेरे साथ मेरे आसपास के लोगों के जीवन में भी बदलाव आए।
1: बिल्कुल,
0: यही वो सोच है श्रोता साथी जो एक साधारण सपने को बड़े उद्देश्य में बदल देती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से इसी विषय को लेकर हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें?
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि अलग तरीके से हमें ऐसे सपने देखने हैं ताकि हमारी जो छोटी बस्तियां हैं और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी तारों से चमक उठें।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने गीत से पहले जागृति जी युवा साथियों को बताया था कि हर व्यक्ति का एक अलग सपना होता है, लेकिन दोस्तों प्रश्न ये है कि क्या हमारा सपना सिर्फ इतना है कि हम आगे बढ़ जाएं, या फिर ये है कि हमारे साथ हमारा गांव भी आगे बढ़े। हम देखते हैं युवा साथियों, क्या सफलता को अक्सर शहरों, बड़ी नौकरियों, बड़े घरों और बड़े पहचान से जोड़कर देखा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हमें लगता है जागृति जी कि अगर हम गांव से निकलकर किसी बड़े शहर में पहुंच गए, अच्छी नौकरी हमें मिल गई या हमारा नाम दूर तक पहचान लिया गया तो हम सफल हो चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो सफलता का एक दूसरा अर्थ भी है। अगर किसी युवा ने अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की है तो वह भी सफलता है। अगर किसी ने अपनी बस्ती की महिला को डिजिटल भुगतान सिखाया है तो वह भी सफलता है साथियों। वहीं अगर किसी युवा ने किसान को नई तकनीक की जानकारी दिलाई है तो वह भी एक सफलता का रूप है।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी ने अपने गांव के युवाओं को कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया तो वह भी सफलता है। कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों कि बदलाव हमेशा बड़ी

0: होगा जब हमारी सोच भी आगे बढ़ेगी,
1: बिल्कुल
0: अलग तरीके से सपने देखने का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि हर युवा को कोई असाधारण या बहुत बड़ा काम ही करना है।
1: जी जी।
0: इसका अर्थ ये है कि जो समस्या दिखाई दे उसके समाधान के बारे में सोचना भी जरूरी है। जहाँ बेरोजगारी दिखे वहाँ कौशल और रोजगार की संभावना तलाशना, जहाँ शिक्षा की कमी दिखे वहाँ सीखने का माहौल बनाना, जहाँ पानी की समस्या हो वहाँ संरक्षण के उपाय खोजना, जहाँ बच्चों में पढ़ाई का उत्साह कम हो वहाँ उन्हें प्रेरित करना, जहाँ युवाओं में निराशा हो वहाँ उम्मीद की बात करना, यही है अलग तरीके से सपने देखना।
1: जी हाँ, इसी के साथ अगर बात करें तो युवा साथियों, हमारे गांव के हर मोहल्ले में अनेक संभावनाएं हैं।
0: बिल्कुल,
1: वहां प्रतिभा की कमी नहीं है, बस कई बार उस प्रतिभा को सही दिशा और अवसर नहीं मिल पाता। जागृति जी, किसी मोहल्ले का बच्चा बहुत अच्छा चित्र बनाता है, कोई युवा मोबाइल और कंप्यूटर चलाना अच्छी तरह जानता है, किसी को खेती की नई तकनीकों में रुचि है तो कोई लोकगीत बहुत अच्छा गाता है, किसी को सिलाई कढ़ाई आती है, कोई खेल में अच्छा है तो कोई लोगों से बहुत ही अच्छी तरह से बात कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे कि जरूरत तो सिर्फ यह समझने की है कि हर हुनर अपने अंदर एक संभावना लेकर आता है। युवा अगर अपने आसपास की प्रतिभाओं को पहचानने लगेंगे तो छोटी बस्तियां भी अपने आप नई ऊर्जा से भर जाएंगी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, बदलाव के लिए हमेशा बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार एक व्यक्ति की शुरुआत दूसरों को साथ जोड़ देती है। कशिश, कल्पना कीजिए श्रोताओं कि किसी छोटे गांव का एक युवा तय करता है कि वो हर शाम एक घंटा बच्चों को पढ़ाएगा। शुरुआत में शायद 2 बच्चे आए, फिर 5 बच्चे आए, फिर 10। धीरे धीरे दूसरे युवा भी जुड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कोई किताबें जुटा सकता है, कोई बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकता है, कोई खेल करवाने लगेगा, कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी देगा, और देखते ही देखते एक छोटी सी पहल पूरी बस्ती के लिए सीखने का केंद्र बन सकती है। यही सपने की असली ताकत है श्रोताओं, एक व्यक्ति की सोच सामूहिक प्रयास में बदल सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी कि हम अलग अलग तरीके से सपने देखे युवा साथी, ताकि छोटी बस्तियां भी तारों से चमक उठे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना था कि सपनों का मतलब सिर्फ बड़ी जगह पहुंचना नहीं होता है, अलग अलग तरीके से सपने देखने की जरूरत क्यों है ये भी हमने जाना था। साथ ही हम जान रहे थे कशिश कि युवा अपने सपनों को बस्ती की जरूरतों से कैसे जोड़े, एक युवा की सोच कई लोगों की दिशा कैसे बदल सकती है। ये सारी बातें गीत से पहले हमारी श्रोता साथियों के साथ रही थी।
1: जी हाँ।
0: यही जानते हैं कि रोजगार के सपने को स्थानीय अवसरों से हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो साथियों, आज ग्रामीण युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक है रोजगार की तलाश। अक्सर हम देखते हैं कशिश की युवा सोचते हैं कि रोजगार का मतलब है गाँव छोड़कर शहर चले जाना।
1: जी जी,
0: शहर जाना गलत नहीं है श्रोताओं, बेहतर अवसर के लिए कहीं भी जाना युवाओं का अधिकार है। लेकिन साथ ही ये सोच भी जरूरी है कि क्या हमारे गांव और स्थानीय क्षेत्र में भी रोजगार की नई संभावनाएं पैदा की जा सकती है। कृषि आधारित छोटे व्यवसाय, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाएं, स्थानीय उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री, पर्यटन, लोक कला और कौशल आधारित सेवाएं, इन क्षेत्रों में युवा नई संभावनाएं तलाश कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: एक युवा अगर अपने क्षेत्र के किसी स्थानीय उत्पाद को बेहतर तरीके से पैक करके बाजार तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ खुद कमाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वह दूसरे लोगों के लिए भी अवसर पैदा कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यही वो सपना है कशिश, जिसमें सफलता अकेले की नहीं बल्कि सबकी होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। साथ ही हमारे युवा साथी तकनीक को मनोरंजन से आगे लेकर भी जा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि मोबाइल आज लगभग हर युवा के हाथ में होता है, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि हम मोबाइल से क्या बना रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। अगर वही मोबाइल हमें नई जानकारी देता है, कोई कौशल सिखाता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी हम तक पहुंचाता है, बाजार की जानकारी देता है, ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ता है या स्थानीय उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करता है, तो यही तकनीक बदलाव का साधन भी बन सकती है। जागृति जी, युवा चाहे तो अपने गाँव की कहानी भी डिजिटल दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। अपने क्षेत्र की कला, संस्कृति, खेती, लोकगीत, परंपराएं और स्थानीय प्रतिभाओं को दुनिया के सामने वे रख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि युवा साथियों आज छोटी सी बस्ती की आवाज भी डिजिटल माध्यम से दूर तक पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, और हम कह सकते हैं कि किसी भी बस्ती की असली प्रगति तब होती है जब वहाँ के लड़कों के साथ साथ लड़कियों के सपनों को भी बराबर महत्व मिलता है।
1: जी जी,
0: श्रोताओं, एक लड़की पढ़ना चाहती है उसे अवसर मिले, वो खेलना चाहती है उसे मैदान मिले, वो व्यवसाय करना चाहती है उसे कौशल और मार्गदर्शन मिले, वो तकनीक सीखना चाहती है उसे सीखने का अवसर मिले। किसी लड़की का सपना सिर्फ इसलिए छोटा नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि वो छोटी बस्ती से आती है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोताओं, कहा गया है कि प्रतिभा का कोई पता नहीं होता और सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जब बस्ती की बेटियां आगे बढ़ती है तो उनके साथ आने वाली पीढ़ियों के सपने भी बड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, इसी के साथ युवा साथियों आपसे कहना चाहेंगी कि क्या हमने कभी ये सपना देखा है कि हमारी बस्ती हरियाली से भर जाए।
0: बिल्कुल,
1: हमारे घर के आसपास पेड़ हो, तालाब साफ हो, पानी की बर्बादी कम हो, प्लास्टिक का उपयोग घटे और गांव की गलियां स्वच्छ हो। जागृति जी, देखा जाए तो ये भी एक सपना है और इसे पूरा करने के लिए किसी बड़े संगठन का इंतजार करना जरूरी नहीं है।
0: जी हाँ,
1: कुछ युवा मिलकर भी पौधारोपण शुरू कर सकते हैं। पानी बचाने की जागरूकता श्रोता साथियों हमारे द्वारा फैलाई जा सकती है। स्कूलों में पर्यावरण क्लब बनाए जा सकते हैं और स्वच्छता अभियान चलाए जा सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: आपको बताना चाहेंगे कि आपकी छोटी सी शुरुआत भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव बन सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों, शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा पास करना नहीं होता, शिक्षा हमें सवाल पूछना सिखाती है, सही और गलत में अंतर समझाती है, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझाना सिखाती है, नई परिस्थितियों में समाधान खोजना सिखाती है। इसलिए युवा अगर अपने आसपास के बच्चों में सीखने की आदत विकसित करेंगे तो ये भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक किताब किसी एक बच्चे को पढ़ाई से जोड़ सकती है, एक अच्छा शिक्षक किसी बच्चे का आत्मविश्वास बदल सकता है और एक प्रेरक बातचीत किसी युवा को हार मानने से रोक सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए ज्ञान बांटने वाला युवा भी समाज का निर्माता होता है।
1: जी हाँ, इसी के साथ युवा साथियों, सपने देखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उनके लिए लगातार प्रयास करना भी है।
0: बिल्कुल,
1: हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता, कई बार असफलता मिलती है, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कभी श्रोता साथियों आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत का परिणाम ही नहीं मिल रहा है, तो कभी आपके जो रास्ते हैं वो भी बंद आपको दिखाई देंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन ऐसे समय में हमारे युवा साथियों को ये याद रखना चाहिए कि रास्ता बंद होना, मंजिल खत्म होना एक बात नहीं होती। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका आप खोजिए, अगर कोई अवसर नहीं मिल रहा है तो नया कौशल सीखिए, अगर कोई साथ नहीं दे रहा है दोस्तों, तो अपनी शुरुआत छोटे स्तर से कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कई बड़ी कहानियों की शुरुआत बहुत छोटी तरीके से होती है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे युवा साथी को हम कहना चाहेंगे कि समाज की समस्याओं को देख कर केवल ये कहना आसान है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, कोई दूसरा आगे आए, लेकिन एक बार खुद से पूछ कर देखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: शायद आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, शायद आप किसी बुजुर्ग को डिजिटल काम में मदद कर सकते हैं, शायद आप किसी किसान तक सही जानकारी पहुँचा सकते हैं, आप किसी युवा को कौशल सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या आप अपनी बस्ती की किसी समस्या पर लोगों को एक साथ ला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही छोटा सा सवाल कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, एक दिन पूरी बस्ती का भविष्य बदल सकता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। अब हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों आप कल्पना कीजिए एक ऐसे गाँव की जहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए उत्साहित हैं।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ युवा रोजगार के नए रास्ते खोज रहे हैं, जहाँ लड़कियाँ अपने सपनों को खुलकर पूरा कर रही हैं, जहाँ किसान जागृति जी नई जानकारी अपना रहे हैं, जहाँ लोग पानी और पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं, और जहाँ गांव के बुजुर्ग का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा साथ लेकर काम कर रहे हैं। श्रोता साथियों, क्या वह गांव किसी बड़े शहर से कम नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी जगह की चमक उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, वहाँ रहने वाले लोगों की सोच से होती है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, कहा जाता है कि जहाँ सोच बदलती है वहाँ परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे बदलने लगती है।
0: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में यही कहना चाहेंगे कि आज जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचे तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं क्या बनूंगा या क्या बनूंगी। एक सवाल जरूर आप अपने अंदर जोड़िए कि मैं जहाँ रहूंगी या रहूंगा वहाँ क्या बदल सकती हूँ, क्योंकि एक युवा सिर्फ अपने परिवार का भविष्य नहीं होता श्रोता, वो अपने समाज की ऊर्जा होता है, वो अपने बदलाव की शुरुआत हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: वो किसी बच्चे के लिए प्रेरणा बन सकता है, वो किसी बस्ती के लिए उम्मीद भी बन सकता है। याद रखिए, तारों की रोशनी बड़ी नहीं होती श्रोताओं, लेकिन अंधेरी रात में वही रास्ता दिखाती है।
1: जी जी।
0: इसी तरह आपकी छोटी सी कोशिश भी किसी के जीवन में बड़ी रोशनी बन सकती है। तो आप सपने देखिए, लेकिन थोड़े अलग तरीके से देखिए, ऐसे सपने देखिए जिनमें सिर्फ मैं नहीं हम शामिल हो, ऐसे सपने जिनमें सिर्फ आपकी मंजिल नहीं आपकी बस्ती की मुस्कान भी हो।
1: बिल्कुल,
0: और ऐसी कोशिश कीजिए जो कि आने वाले समय में जब कोई आपकी छोटी सी बस्ती की तरफ देखे तो कहे यहाँ सिर्फ घर नहीं है, यहाँ सपने रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उठो युवा, सपनों को दिशा दो, अपनी सोच को नई उड़ान दो, एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम समाज बढ़ाए, फिर देखना छोटी बस्तियां भी तारों से चमक उठेगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों अब हम कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बात आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो युवा साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हर रोज एक नया विषय जुड़ता है, जहाँ बात होती है हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातों की। आज का हमारा विषय है बच्चों का पोषण और स्वच्छता। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों को पौष्टिक खाना खिला दिया, दूध पोषण दे दिया, फल सब्जियाँ खिला दी तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन क्या केवल अच्छा भोजन ही पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि बच्चा जो भोजन खा रहा है वह साफ हाथों से तैयार हुआ है या नहीं, बच्चों के हाथ साफ है या नहीं, पीने का पानी सुरक्षित है या नहीं, इन बातों का भी उनके स्वास्थ्य और पोषण पर सीधा असर पड़ता है। कई बार बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, दस्त या पेट से जुड़ी समस्या होती है और शरीर में गया पोषण भी ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, पोषण की थाली के साथ स्वच्छता की आदत भी जरूरी है। तो आज इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों का पोषण और स्वच्छता, यानी कि स्वच्छ हाथ स्वस्थ बचपन, स्वच्छता से जुड़े पोषण की ओर को लेकर। तो श्रोता साथियों, गीत से पहले हमने कहा था कि किस तरीके से पोषण के साथ हाथों की स्वच्छता भी जरूरी है। यही एक छोटी सी बातचीत के माध्यम से हम जानते हैं कि किस तरीके से हाथों की सफाई हमारे लिए जरूरी है। तो आइए सुनते हैं कमला और सुनीता की बातों को।
1: अरे सुनीता, जरा जल्दी आना, ये देख मेरा छोटू खाना खाने बैठा है और इसके हाथ कितने गंदे हैं।
2: अरे हाँ, मिट्टी में खेल कर आया है क्या?
1: हाँ सुनीता, अभी बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, मैंने कहा चल खाना खा ले। अब सोच रही हूँ हाथ धुलवा दूं या ऐसे ही खिला दूं।
2: अरे कमला, खेलने के बाद बिना हाथ धोए खाना ये तो सही बात नहीं है, पहले साबुन से हाथ धुलवा।
1: लेकिन सुनीता, हाथ तो पानी से धो सकता है ना, इससे छोटे बच्चों को रोज रोज साबुन से हाथ धुलाना जरूरी है क्या?
2: हाँ, सिर्फ हाथ पर लगा दिखाई देने वाला मेल ही तो गंदगी नहीं होता है, हाथों पर ऐसे कीटाणु भी हो सकते हैं जो दिखाई नहीं देते, वही हाथ के माध्यम से खाने के साथ शरीर में पहुंच जाते हैं।
1: अच्छा, मतलब हाथ साफ दिखाई दे तब भी हाथ धोना जरूरी है।
2: बिल्कुल, खासकर खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद, इन दोनों समय पर हाथ धोना बहुत जरूरी है। और बच्चे को खाना खिलाने से पहले माँ या जो भी खाना खिला रहे हैं उसके हाथ भी साफ होने चाहिए।
1: हाँ सुनीता, सही कह रही हो, लेकिन कई बार बच्चे हाथ धोकर भी 2 मिनट में गंदे कर देते हैं, फिर मिट्टी में खेलने लग जाते हैं।
2: तो उन्हें डांटने के बजाय आदत बनानी होगी। हम खुद उनके सामने हाथ धोएंगे, उन्हें सही तरीका बताएंगे और घर में हाथ धोने की जगह पर साबुन रखेंगे तो बच्चे को भी याद रहेगा कि समय समय पर हाथ धोने हैं।
1: हाँ सुनीता, और साथ ही नाखून भी तो बढ़ जाते हैं, उसमें भी तो मिट्टी भर जाती है।
2: बिल्कुल, इसलिए हाथ धोने के साथ नाखून छोटे और साफ रखना भी जरूरी है।
1: अच्छा, आज तो छोटू के लिए एक नियम पक्का है, खाना खाने से पहले साफ हाथ और बाहर से आने के बाद साफ हाथ।
2: हाँ, और सिर्फ छोटू ही क्यों, घर के बड़े भी वही नियम अपनाएंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम बड़े उन्हें करते हुए दिखाते हैं।
1: हाँ सुनीता, बात तो सही है, चल पहले छोटू के हाथ धुलवाते हैं फिर खाना खिलाते हैं।
2: हाँ, क्योंकि स्वस्थ बच्चा सिर्फ पौष्टिक खाना खाने से नहीं बल्कि स्वच्छ आदतों के साथ बड़ा होता है।
0: तो श्रोता साथियों, आपने सुना कमला और सुनीता की बातचीत में कितनी छोटी छोटी बातें सामने आई, हाथ धोना, नाखून साफ करना, बच्चों को खाना खिलाने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखना। लेकिन सही तरीके से हाथ कब धोना चाहिए, केवल पानी काफी है या साबुन जरूरी है, और बार बार होने वाले दस्त का बच्चे के पोषण पर क्या असर पड़ सकता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अब सुनते हैं हम हमारे विषय विशेषज्ञ की बातों को। आप बने रहिए वागर रेडियो 90.8 FM पर। सर नमस्कार।
3: नमस्कार
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागर रेडियो परिवार में।
3: जी मैम।
0: सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों के लिए हाथों की स्वच्छता क्यों जरूरी है और बच्चों को हाथ किस तरीके से धोने चाहिए, तो ये बातें हमारी आपसे अवश्य रहेंगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपके परिचय से रूबरू कराना चाहूंगी हमारे श्रोता साथियों को।
3: जी थैंक यू मैम। मेरा नाम डॉक्टर दीपक नीनामा है, मैं अभी फिलहाल सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा में।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया और कार्यक्रम की शुरुआत में हम विषय से भी रूबरू हो पाए थे, तो यही आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि हाथ धोना बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से किस तरीके से जुड़ा हुआ है।
3: देखिए मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाथ जो है वो हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कहीं भी टच हो जाता है, बिल्कुल एक्सपोज्ड है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो हम जहां भी किसी भी वस्तु या चीज को छुएंगे तो वहां से इन्फेक्शन होने का हमें चांस मिलता है। तो हैंड वॉशिंग इसलिए जरूरी है कि आप जब भी कहीं बाहर जाए या बाहर से आए तो आपके हाथ कहीं भी टच हुए हैं तो आप हैंड वॉश कर लोगे तो आपके हाथों में जो भी बैक्टीरिया या जो भी जीवाणु लगे थे वो धुल जाएंगे। तो उससे आपको इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा।
0: बिल्कुल। तो सर बच्चों को दिन में किस किस समय हाथ धोने की जरूरत होती है?
3: जैसे कि हम यदि दिनचर्या की बात करें सुबह से शाम तक, तो सुबह हम जैसे उठते हैं, उठने के बाद आप शौच जाते हो, शौचालय का यूज करने के बाद में, टॉयलेट जाने के बाद में आपको हैंड वॉश करना चाहिए, आपको सोप वाटर से करना चाहिए। उसके बाद में आप खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाने से पहले आप हैंड वॉश करिए, उसके बाद खाना खा लें उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना चाहिए। और जब भी आप खाना खाते हैं, सो जाते हैं या बाहर से कहीं से आते हैं तो आपको हैंड वॉश आवश्यक रूप से करना चाहिए।
0: बिल्कुल। सर हाथ धोने का सही तरीका क्या है और कितनी देर तक हमें हाथ धोने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चों को हम बोलते हैं आप हाथ धोइए, वो नल के नीचे हाथ रखकर दौड़कर आ जाते हैं खाना खाने या कोई भी उनका जो कार्य है वो करने के लिए। तो कितनी देर तक और किस तरीके से हाथ धोने की जरूरत है?
3: मैम पांच स्टेप होती है हाथ धोने की। आप रनिंग वाटर में धोइए और उसको 40 से 60 सेकंड तक आपको धोना चाहिए, कम से कम 20 सेकंड तो आपको हैंड वॉश करना ही चाहिए आप सोप वाटर से। तो उसकी स्टेप इस तरीके से होती है कि आप हथेलियों को रगड़िए, अपनी अंगुलियों को रगड़िए, अपने अंगूठे को और नाखूनों को इस तरीके से हथेली में। तो उससे क्या है कि आपके हाथ में जहां भी जिस भी एरिया में यदि कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा जीवाणु लगा हुआ है तो धुल जाएगा।
0: बिल्कुल। तो सर अब यही मेरा अगला सवाल है आपसे कि क्या पानी से हाथ धोना पर्याप्त है या साबुन का इस्तेमाल भी जरूरी है?
3: आवश्यक नहीं है कि हमेशा आपको साबुन मिले ही या अवेलेबल है। यदि वो नहीं भी है तो ऐसा माना जाता है कि मोर देन 90% आपके जितने भी जर्म्स अगर लगे हुए हैं आपके हैंड में, तो अगर आप रनिंग वाटर या सिंपल वाटर से अगर हैंड वॉश करते हैं तो 90% से ज्यादा आपके जो भी जर्म्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। बाकी बेटर यही है कि अगर साबुन अवेलेबल है तो आपको उसका यूज करना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप हाथ धोने की चीजों को लेकर ढेर सारी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो गंदे हाथों से बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती है?
3: वैसे तो बीमारियां देखो अलग अलग तरीके की होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन बच्चों के अंदर मेनली जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड डायरियल डिजीजेस होती है, यानी कि दस्त लगने जैसी। और दस्त भी लग जाए, दूसरे जो अपने आहार नाल जो होती है उसके अंदर यदि कीड़े हैं जिसमें एस्केरिस या इस तरीके के पनपना शुरू हो जाए तो उससे क्या होगा कि भोजन का अवशोषण कम होगा तो बच्चे के अंदर कमजोरी पैदा होगी। तो मुख्य रूप से एक तो डायरिया होता है, बाकी कुपोषण और ये जो बीमारियां हैं वो होती हैं।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हाथ अगर हम नहीं धोते हैं समय पर तो बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या बार बार दस्त होने से बच्चों के पोषण और विकास पर असर पड़ता है?
3: जी बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आपके आहार नाल में जो आपने भोजन लिया है या पोषक तत्व आपने लिए हैं उनका अवशोषण नहीं होगा, और उनका अवशोषण नहीं होगा तो आपकी जो शारीरिक विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपके विकास पे जो है वो इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा।
0: बिल्कुल। तो यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि भोजन बनाने और बच्चों को खाना खिलाने से पहले किन किन स्वच्छता संबंधित बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है?
3: यही मैम कि आप जहाँ भी कुकिंग कर रहे हैं वो एक क्लीन सरफेस और क्लीन एरिया होना चाहिए, सराउंडिंग आपका क्लीन होना चाहिए, जो भी आइटम आप यूज कर रहे हैं भोजन बनाने में, तो जैसे सब्जियां हैं आप उनको खरीद के लाए हैं तो उसको पकाने से पहले उनको अच्छे साफ पानी में धोएं, और खाना बनाने वाला जो भी इंसान है वो हैंड वॉश करे, इवन ग्लव्स भी यूज करने चाहिए। तो इस तरीके के प्रिकॉशंस जो है वो भोजन बनाते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए।
0: बिल्कुल। तो यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए पीने के पानी को सुरक्षित रखने के लिए घर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें?
3: पीने का पानी, क्योंकि पानी एक ऐसा माध्यम कहें या एक तो हमारी दैनिक दिनचर्या में सबसे आवश्यक चीज है पानी, कि आपको उसका समय समय पर सेवन करना होता है, और दूसरा उसमें कंटामिनेशन यानी कि बाहरी किसी भी जीवाणु या ऐसे किसी इन्फेक्शियस एजेंट के मिलने की संभावना रहती है, तो हमें पानी साफ बर्तन में भरना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, पीने योग्य पानी होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
3: और आरओ वाटर हो बहुत अच्छी बात है, बच्चों की पहुंच से उसको दूर रखना चाहिए, और कंटामिनेशन नहीं हो इसके लिए हमें उसको ढक के रखना चाहिए, और आप पानी जिस भी ऑब्जेक्ट से निकालते हैं तो वो साफ होना चाहिए, और वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसको आप यूज करें तो केवल पानी निकालने के लिए ही उसका उपयोग करें, दूसरे काम के लिए आप नहीं करें।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो यही क्या नाखूनों की सफाई भी हाथ धोने जितनी ही जरूरी है?
3: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नाखूनों में जर्म्स जो है वो वहाँ पे स्पेस होता है तो छिपे रहते हैं, और फिर उससे आप भोजन करते हैं तो फिर उससे इन्फेक्शन होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो सर स्कूल और आंगनबाड़ी में बच्चों को हाथ धोना और स्वच्छता की आदत सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है?
3: देखो मैम, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, कि बच्चों को एक साथ आप उनके सामने हाथ कैसे धोने हैं इसकी प्रैक्टिस आप खुद भी करें और बच्चों को कराएं, और जो भी हैंड वॉशिंग एरिया है जहां भी, वहां पे आपकी हैंड वॉशिंग की स्टेप्स का पोस्टर लगाएं, और समय समय पर हमारी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो भी है जो आपकी स्कूल में विजिट करते हैं तो वहां पे हैंड वॉशिंग स्टेप की जो प्रैक्टिस है वो सेंसिटाइजेशन जो है वो थोड़े थोड़े समय में होते रहना चाहिए, ताकि ये क्या है कि आपकी रोज की लाइफ का एक पार्ट बन जाए, कि हाँ आपको ध्यान आ जाए कि मुझे भोजन करना है तो उसके पहले मुझे हैंड वॉश करना ही करना है।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि स्कूल और आंगनबाड़ी में बच्चों को इस आदत को सिखाने का प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, यही सर अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को स्वच्छता पोषण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: यही कि देखिए, हर एक एज की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, मेल फीमेल की अलग होती है, और एज वाइज आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो एक संतुलित आहार जिसमें आपके प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो और विटामिन्स वगैरह हो, तो इनका आप सेवन करें, और उसको खाने की टाइमिंग का, जैसे सुबह आप 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कर लें, 12 से 2 बजे के बीच में आप लंच करें, इवनिंग का जो खाना है वो आप 6 से 8 बजे के बीच में कर लें, तो टाइमिंग का भी बड़ा इश्यू होता है, और बाकी आपको हर तरीके की जो भी वेजिटेबल्स हैं को आपको यूज करना चाहिए, जिससे कि आपको जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो मिल सके।
0: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
3: जी धन्यवाद मैडम।
0: तो श्रोता साथियों, आज की बातचीत से हमें बहुत सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात समझ आती है कि बच्चों का पोषण केवल उनकी थाली में मौजूद भोजन से तय नहीं होता, बल्कि उस भोजन तक पहुँचने वाली पूरी प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बच्चा खाना खाने से पहले हाथ धोए, बाहर से आने के बाद हाथ साफ करे, नाखून छोटे और साफ रखे, माता पिता बच्चों को खाना खिलाने से पहले अपने हाथ साफ करें, भोजन को ढककर सुरक्षित तरीके से रखें और पीने के पानी की स्वच्छता पर भी ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को स्वच्छता सिखाने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं होती, हम खुद सही आदत अपनाएंगे तो बच्चे देखकर सीखेंगे, क्योंकि एक साफ हाथ, एक सुरक्षित घुट पानी और एक स्वच्छ भोजन बच्चे के स्वस्थ बचपन की मजबूत नींव बन सकते हैं। इसी संदेश के साथ श्रोता साथियों, अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई हमें इशारा कर रही है कि अब समय हो चला है प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने बच्चों को भी स्वच्छता की आदतें सिखाते रहें। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बूंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बूंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बूंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बूंद आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बूंद आपड़े भाई बूंद ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू भारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते। मैं आप सबनु घणमान स्वागत करो हूँ हमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत ने विषय है कि आदिवासी जीवन में वास नु महत्व है ने परंपरा ने आजीविका ने खेती नु अंत की हूँ संबंध है। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी आप तक घना कानी बातें थेगा। पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हमारा विदा गीत ने मोरे करा अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रहो आप रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: करते हैं बांस की, तो जैसे बांस केवल एक लकड़ी नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: वो हमारे जीवन में एक बदलाव लाने के लिए हम उसके साथ में प्रयास कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और कहीं जो हमारे जो बाप दादा थे पहले पुराने, वो उनके साथ करते थे, तो बांस के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। क्योंकि जब बांस को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि केवल वो हमारे घर में लगाने के लिए, या हमारे घर के जो केलू है उसके साथ उसको लगाना घर बनाने के लिए ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि बांस जो है वो, जैसे हम आर्थिक मजबूती की बात करते हैं, तो वो आपको प्रदान कर सकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि पारंपरिक रूप से आदिवासी समुदाय बांस का किन किन कामों में उपयोग करता रहा है।
0: तो देखिए, अगर हम पुरानी बात करते हैं, आज के 10-15 साल पहले की, तो बांस का उपयोग है एक तो घर बनाने में, हमारे जो बांस के जो बर्तन होते हैं, जैसे गेहूं रखने के लिए तो कबले बनाते थे, कबलों के साथ हमारे यहाँ पे जो चलन है, जो हम तीर बाण का जो बात करते हैं वो बनाते थे। उसके अलावा कई प्रकार की टोकरियाँ, हमारे पशुओं को चारा डालने के लिए जो है बर्तन, तो ये सब जो है बनाए थे।
1: बिल्कुल।
0: और इसके साथ में आप देखेंगे, उसके अलावा भी जो है, जैसे सुंदर आप लोग बंडिंग जो हमारे खेती के लिए करते हैं हम लोग, तो हमारे पुराने जमाने में क्या होता था कि कटाव की समस्या ज्यादा थी।
1: बिल्कुल।
0: तो जब मिट्टी कटाव की बात आती है, तो बांस एक ऐसा पौधा है जो आपकी मिट्टी कटाव को रोक सकता है, क्योंकि उसका जो जड़ों का जाल होता है वो काफी मजबूत होता है और उसमें कटाव की संभावना ही कम रहती है। इसके साथ में इसका एक फायदा ये भी है, और ये हमारे बुजुर्ग करते थे, कि जो बांस है, बांस को अगर हम लोग हमारी मेड़ पे लगाते हैं तो हमारी जो फसल है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: जबकि अन्य पेड़ अगर कुछ होता है तो शायद उस पेड़ के आसपास पैदावार को प्रभावित कर सकता है।
1: जी जी।
0: लेकिन बांस ऐसा नहीं करता है।
1: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप बांस को लेकर हमें जानकारी दे रहे हैं, तो बांस की खेती आदिवासी किसानों के लिए अतिरिक्त आय का अवसर कैसे बन सकती है?
0: जी देखिए, अतिरिक्त आय की बात करते हैं तो बांस जो है वास्तव में ही एक अतिरिक्त आय का है, संसाधन है। वो कैसे है मैं बताऊं आपको। जैसे आपने बांस लगाया, आपने 3 से 4 साल बाद जो है बांस आपके लिए तैयार हो जाएगा, और तैयार होने के बाद में जो बांस का जो प्रोडक्शन है, तो आप क्या है, एक तो जैसे हम एक बांस को बेचते हैं काट के, तो उसकी कीमत 100-150 के बराबर होती है। जैसे एक पतला बांस बेचते हैं, तो बांस की भी अलग अलग वेराइटीज होती है, उसके अनुसार उसका दाम मिलता है। लेकिन उसी बांस को हम कुछ बनाए हैं, जैसे आपने टोकरी बना ली, आपने जो है टेबल कुर्सियां जो है आप बना सकते हैं, इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो हमारे कबले हैं, हमारे पशुओं के लिए चारा बनाने की टोकरियां हैं, हमारे घर में खाना खाने के लिए रोटी रखने के लिए जो टोकरी है, ये सब जो है काफी जो है महत्वपूर्ण होते हैं जो बना सकते हैं। और एक बांस से कम आप जो है उसकी 3 गुना आय प्राप्त कर सकते हैं उसका प्रोडक्ट बना के। तो आप इस तरह से जो है हमारे जो बांस है वो महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, हमारी जो बेलू है उसकी, वो जब उसके साथ कुछ काम करते हैं हम या कुछ बनाकर बेचते हैं, तो उसका 2-3 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। और उससे क्या होता है कि आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं वो मिलकर कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अतिरिक्त रोजगार का संसाधन बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे अगर आपके पास बांस है तो आपको पलायन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा उसके साथ परिश्रम करके और बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। क्योंकि देखा होगा कि पहले भी जो बांस है उसके बहुत प्रोडक्ट बनते थे, अभी भी जो है आप देखेंगे अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट होते हैं, कैफे होते हैं, या तो दुकानें होती है, या आप चाय की दुकान देख लो आप,
1: बिल्कुल
0: बांस की अगर वो बनी होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा, तो वो बहुत सुंदर लगता है।
1: बिल्कुल सर। तो क्या बांस जो है वो हम खेतों की मेड़ों या खाली जमीन पर लगा सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, हम मेड़ों पर खाली जगह पर बांस को लगा सकते हैं। और वो महत्वपूर्ण होता है कि आपकी जगह नहीं जाएगी, एक तो अतिरिक्त कहीं लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको खेत में लगाना है, आप मेड़ों पे लगाएं, आप ऐसी जगह लगाएं जहां पे आपका मिट्टी कटाव हो रहा है, तो वहां भी आपको फायदा होगा। दूसरा कि उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते भी जो है आपको हरी खाद के रूप में धीरे धीरे वो मिट्टी के साथ बदल देते हैं, तो आप कर सकते हो। और मुझे कर सकते नहीं, हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उस अतिरिक्त आय का और हमारे पास जो रोजगार के संसाधनों की जो कमी को देखते हुए हमें उसको अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप बांस को लेकर हमें

0: सारी जानकारियों से अवगत करवा रहे हैं, तो क्या बांस आधारित रोजगार से आदिवासी युवाओं को अपने गांव में ही काम मिल सकता है?
1: बिल्कुल जी, हमने वही ही बात की कि अगर आपने अभी 1000 पौधे अगर बांस के लगाते हो तो वो धीरे धीरे आने वाले समय में उसके कई गुना बांस जो है वहाँ पे आपको होने लगेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और 3-4 साल में जब वो तैयार हो जाएगा तो उससे अतिरिक्त आय आप कई प्रकार से कर सकते हैं। युवाओं को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीख सकते हैं अपने बुजुर्गों से, अपने समुदाय से, और अच्छे जो सामान है वो तैयार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो सर, क्या आज भी आदिवासी समुदाय जो है वो पारंपरिक ज्ञान बांस के संरक्षण और उपयोग के लिए आवश्यक है?
1: जी, ये हमारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहा है, और आप देख रहे हो कि अभी कई प्रकार की जो समस्याएं हैं जो है हमारे क्षेत्र में है, और खास तौर से रोजगार की, तो इसको हमारे जो आदिवासी जीवन की हम बात करते हैं तो ये हमारे जीवन का हमेशा से हिस्सा रहा है। तो हम उस हिस्से को कई परिवारों ने शायद उसको दूर कर दिया है, लेकिन अभी जरूरत है वापस उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना, ताकि परिवार को एक अतिरिक्त आय के साथ एक रोजगार उपलब्ध होगा, और जो है वर्तमान की आवश्यकताएं हैं जो वहां से बने हुए सामानों की वो बहुत मात्रा में है।
0: बिल्कुल। तो यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि इसकी खेती और इससे जुड़े व्यवसाय शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
1: देखिए, चुनौती तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपको अगर जैसे पौध तैयार करनी है, आप पौध तैयार करें, मौसम के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मौसम में उसको तैयार करना है। दूसरा जो चुनौती की बात करते हैं तो यह है कि उसकी देख रेख बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जितना अच्छे से उसकी देख रेख करोगे उसका उत्पादन और उसकी जो ग्रोथ है वो भी उतनी अच्छे से होगी, तो ये चीजें जरूरी है हमारे। दूसरा कि हमारी जो जमीन है वो बांस के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है, और हम यहाँ अलग अलग प्रकार की जो वेराइटीज है, जो प्रकार के बांस है, तो उनकी जो किस्में हैं उनको हम लगा सकते हैं। सिर्फ हमें देख रेख करनी है, पानी का ध्यान रखना है, और हमें सही जगह का चयन करना है।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारी जो जमीन है, जो जलवायु है, वो बांस की खेती के लिए उपयुक्त है, तो क्या बांस को दूसरी फसलों के साथ लगाया जा सकता है, और इसकी खेती शुरू करने के लिए किसानों को किन किन जानकारी की आवश्यकता पड़ती है?
1: देखिए, जानकारी तो है सबसे बड़ी, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है जो हमारे बुजुर्ग है उनके पास में इसको लेकर बहुत जानकारियां हैं, हमें कहीं बाहर से जानकारी की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना होगा कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी किस्म के जो बांस है वो हुआ करते थे या हो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो एक तो उसी किस्म का आप चयन करें उन किस्मों का, ताकि वो आसानी से आपके खेत में हो सके। दूसरा है कि जब हम खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे बात आती है कि हमें जो खेती ऐसी जगह है जिसपे आपकी पैदावार नहीं होती है, यहाँ पे आपकी मेड़े हैं या खाली जगह पड़ी है, तो जैसे पहाड़ है, यहाँ पे पत्थर है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि उसको कहाँ लगाना है।
0: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि जो भी किसान भाई बहन पहली बार अगर बांस की खेती शुरू करना चाहेंगे तो उन्हें आप कार्यक्रम के माध्यम से अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि बांस हमें हमेशा हमारे समुदाय का जो जीवन का हिस्सा रहा है, और हमें वापस से अपनाना चाहिए, ताकि हमारे जो समुदाय है, हमारे परिवारों की आय है, वो अतिरिक्त आय के रूप में एक अच्छी सामग्री बनाकर हम बेच सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद जी।
0: નાઇન બોનો જેમકે આપણે આપણે વાસમી માંગીલાલજી જોડે તક હતા, ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી બતાડ્યું હે કે આદિવાસી જીવનની પરંપરા મે બાંસ જે હે ઈ આત્મનિર્ભરતાનું પ્રતિક હરતે હે, એને સાથે આદિવાસી જે પરિવાર હે એનમે બાંસ જે હે ઈ આજીવિકાનું સાધન હરતે બની શકે, આપણે આને કે ઉગાડી શક, કઈ કઈ વાતોનું આપણને ધ્યાન રાખવું હે, તો આશા કરો કે આ હંગરી વાતે આપની ગમી હોંગા।
2: તો સૂટ્યો તો પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટો।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे है जमीन माते नाम हेरते आवे कागज केने कने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लगाड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
4: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके
3: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवो आ सब एनीमिया ना लक्षण है
4: होवे भाइयों बोनू आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया की निःशुल्क जाँच करी है
3: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
4: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
3: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: भाइयों बोनो जैवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो रिश्तो है जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि एक दूसरे से सीखकर बनाए गांव को मजबूत। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे कि जिस गांव में लोग एक दूसरे से सीखते हैं वहां आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। गांव केवल घरों, खेतों और रास्तों का समूह नहीं होता, बल्कि गांव एक जीवंत समुदाय होता है जहां लोगों के बीच रिश्ते, अनुभव, परंपराएं, सहयोग और साझा जिम्मेदारियां जुड़ी होती है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, गांव की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीन या प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों का ज्ञान और अनुभव है। किसी के पास खेती का अनुभव है, किसी को पशुपालन की अच्छी जानकारी है, कोई जल संरक्षण की परंपरागत विधियों को जानता है, तो कोई नई तकनीक और डिजिटल साधनों से परिचित है। अगर इन सभी अनुभव और ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा किया जाए तो गांव विकास की नई दिशा में आगे बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम सभी एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन कर ले।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि हम एक दूसरे से सीखकर हमारे गांव को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि आज के समय में गाँव के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। खेती की बढ़ती लागत, पानी की कमी, बेरोजगारी, शिक्षा की चुनौतियाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, इसी के साथ युवाओं का पलायन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव,
0: बिल्कुल
1: इन समस्या का समाधान केवल बाहर से आने वाली योजनाओं से नहीं हो सकता। इसके लिए गांव के भीतर मौजूद ज्ञान और कौशल और अनुभव को पहचानना, उसका उपयोग करना भी आवश्यक है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक दूसरे से सीखना ही मजबूत गांव की पहली सीढ़ी है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हमारे ग्रामीण जीवन में एक दूसरे से सीखने की परंपरा सदियों पुरानी है। पहले किसान मौसम को देखकर खेती की योजना बनाते थे।
1: बिल्कुल,
0: बुजुर्ग अपने अनुभव से युवाओं को खेती, पशुपालन, जल संरक्षण और जीवन जीने के तरीके बताते थे। महिलाएं एक दूसरे से भोजन, पोषण, बचत, हस्तकला और घरेलू कार्यों से जुड़ी जानकारी को साझा करती थी। समय के साथ परिस्थितियां बदली, श्रोताओं, नई तकनीक आई और जानकारी के साधन भी बढ़ गए।
1: बिल्कुल,
0: आज सीखने का अर्थ केवल बुजुर्गों से सीखना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख ही रहा है। अंजलि, बुजुर्गों के पास अनुभव है, युवाओं के पास ऊर्जा है और तकनीकी जानकारी है, महिलाओं के पास व्यवहारिक ज्ञान है, संगठन क्षमता है और बच्चों के पास नई चीजों को जल्दी सीखने की क्षमता है।
1: बिल्कुल,
0: इन सभी को जोड़ना गांव की बड़ी शक्ति बन सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, गांव की अर्थव्यवस्था में खेती का महत्वपूर्ण स्थान है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए किसानों का आपसी ज्ञान साझाकरण गांव को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि किसी किसान ने कम पानी में अच्छी फसल उगाने का तरीका अपनाया है तो वह अपने अनुभव को दूसरे किसान के साथ साझा कर सकता है। किसी किसान ने जैविक खाद बनाना सीखा है तो किसी ने खेत में पानी बचाने की नई तकनीक अपनाई है।
0: बिल्कुल,
1: और किसी ने नई फसल का सफल प्रयोग किया है तो उनके अनुभव से दूसरे किसान भी लाभ उठा सकते हैं। इससे हर किसान को हर प्रयोग स्वयं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक किसान की सफलता दूसरे किसान के लिए सीख बन सकती है और एक किसान की गलती दूसरे किसान को सावधान कर सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि गांव के विकास की चर्चा महिलाओं के बिना भी अधूरी है। ग्रामीण महिलाएं परिवार और समुदाय के जीवन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: वे खेती करती है, पशुपालन करती है, भोजन, पोषण, बच्चों की देखभाल, बचत और घरेलू प्रबंधन में अपना योगदान देती है। श्रोताओं, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम बहनों को एक दूसरे से बचत, छोटे व्यवसाय, उत्पादन और बाजार से जुड़ी जानकारी भी सिखा सकते हैं। एक बहन अगर कोई छोटा व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रही है तो वो दूसरी बहन को भी उसका तरीका बता सकती है।
1: बिल्कुल,
0: और जब महिलाओं के अनुभव को सम्मान मिलता है अंजलि, और उन्हें निर्णय लेने में भागीदारी मिलती है तो इसका लाभ पूरे परिवार और गांव को मिलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, महिलाओं के अनुभव की शक्ति के साथ अब बात आती है युवाओं की नई सोच की।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, आज का युवा गांव की नई शक्ति है। युवाओं के पास शिक्षा, तकनीक और नई जानकारी तक पहुंच है। वे मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करके खेती, रोजगार, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन केवल स्वयं जानकारी प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। युवा यदि अपनी जानकारी गांव के अन्य लोगों के साथ साझा करे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, कोई युवा ऑनलाइन किसी प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति या रोजगार के अवसर की जानकारी प्राप्त करता है, यदि वह जानकारी केवल अपने तक रखता है तो उसका लाभ उसे तक सीमित रहता है। लेकिन यदि वह गांव के दूसरे युवाओं में भी इसकी जानकारी देता है तो कई लोगों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए युवाओं को गांव में जानकारी बांटने वाले साथी की भूमिका निभानी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि हम एक दूसरे से सीखकर अपने गांव को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और भी बातें जानेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना महिलाओं के अनुभव की शक्ति, युवाओं की नई सोच के बारे में, यही बात आती है बुजुर्गों का अनुभव गांव की धरोहर। जी हां श्रोता साथियों, गांव के बुजुर्ग अनुभव की चलती फिरती पाठशाला होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों को देखा और समझा होता है जागृति जी। वे स्थानीय मौसम, परंपरागत खेती, पुराने फल स्रोत, स्थानीय पेड़ पौधे, लोक संस्कृति और सामुदायिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। आज जब आधुनिकता तेजी से बढ़ रही है, तब जरूरी है कि बुजुर्गों के अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं को बुजुर्गों से बातचीत करनी चाहिए और उनसे स्थानीय ज्ञान सीखना चाहिए। साथ ही बुजुर्गों को भी युवाओं की नई सोच और तकनीक को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब अनुभव और नई सोच एक साथ आते हैं, तब विकास अधिक संतुलित और टिकाऊ बनता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आपने बुजुर्गों के अनुभव के बारे में बताया, यही अगर हम हमारे श्रोता साथियों से बच्चों के बारे में बात करें, तो श्रोताओं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बच्चों में जिज्ञासा होती है अंजलि, वे नई नई चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और वो हमसे प्रश्न पूछने से भी नहीं डरते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर गांव में बच्चों के लिए पुस्तकालय, खेल, विज्ञान गतिविधियां और रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाए, तो वे सीखने के साथ साथ अपनी प्रतिभा का विकास भी कर सकते हैं। बच्चों के सवाल बड़ों को भी कई बार नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए श्रोताओं, गांव को ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां हर उम्र का व्यक्ति सीख सके और सिखा सके।
0: बिल्कुल, इसी के साथ अब बात आती है ग्राम सभा साझा सीखने का मंच। श्रोता साथियों, गांव के विकास में ग्राम सभा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: ग्राम सभा केवल समस्याओं पर चर्चा करने की जगह नहीं, बल्कि जागृति जी, एक दूसरे के अनुभव से सीखने का मंच बन सकती है। यदि किसी गांव ने पानी बचाने का अच्छा तरीका अपनाया, तो उस अनुभव को ग्राम सभा में साझा किया जा सकता है। यदि किसी समूह ने स्वच्छता या शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो उसे दूसरे लोग सीख सकते हैं। ग्राम सभा में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और अन्य समुदाय के लोगों की भागीदारी बढ़े, तो निर्णय अधिक व्यापक और उपयोगी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल, इसी के साथ जल संरक्षण की बात करें अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि पानी गांव के जीवन की आधारशिला है। वर्षा जल का संरक्षण, तालाबों की देखभाल, कुओं का संरक्षण और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: किसी गांव या परिवार ने अगर वर्षा जल को बचाने का बहुत अच्छा तरीका अपनाया है, तो दूसरे परिवार उससे सीख सकते हैं। इसी तरह पुराने जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े बुजुर्गों के अनुभव को भी उपयोग में लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: जब गांव पानी को केवल व्यक्तिगत समस्या न मानकर सामूहिक जिम्मेदारी समझता है, तब जल संरक्षण का प्रयास और अधिक प्रभावी हो जाता है।
0: जी हां जागृति जी, अब यही बात आती है स्वच्छता की। श्रोता साथियों, स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव की पहचान है। स्वच्छता के लिए केवल सफाई कर्मी या पंचायत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक परिवार को अपनी भूमिका समझनी होगी। एक परिवार यदि कचरे को अलग अलग रखने की अच्छी व्यवस्था करता है, तो दूसरे परिवार उसे सीख सकते हैं। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने की आदत, पोषण और सफाई के बारे में लोग एक दूसरे को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि सामूहिक सीख और सामूहिक प्रयास से गांव में स्वस्थ वातावरण बनाया जा सकता है। गांव का भविष्य श्रोता साथियों, उसकी शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यदि गांव का हर बच्चा नियमित रूप से स्कूल जाए, सीखने का अवसर पाए, तो पूरा गांव मजबूत होगा। शिक्षित युवा छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। अभिभावक एक दूसरे से बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के तरीके सीख सकते हैं। स्कूल और समुदाय के बीच संवाद बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य जागृति जी केवल परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि सोचने, प्रश्न पूछने, निर्णय लेने और जिम्मेदारी समझने की समानता विकसित करना भी है।
1: बिल्कुल अंजलि, गांव में अक्सर कोई व्यक्ति अपने प्रयास से सफलता प्राप्त करता है। किसी ने व्यवसाय शुरू किया, किसी ने अच्छी खेती की, किसी ने प्रतियोगी परीक्षा प्राप्त की।
0: बिल्कुल,
1: श्रोताओं, सफलता पाई या किसी ने महिला समूह को मजबूत बनाया, ऐसे लोगों की सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मानने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करनी होगी अंजलि। सफलता की कहानी दूसरों को प्रेरणा जरूर दे सकती है, साथ ही सफल व्यक्ति को भी अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा करना होगा। ज्ञान जितना बांटा जाता है, उतना ही बढ़ता है। साथ ही जीवन में हर प्रयास सफल नहीं होते। गांव के विकास में भी कुछ योजनाएं, कुछ प्रयोग अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, असफलता से निराश होने के बजाय हमें ये देखना होगा कि गलती कहाँ हुई है और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है।
0: जी जी।
1: अगर कोई किसान किसी फसल के प्रयोग में सफल नहीं हुआ, तो उसका अनुभव दूसरे किसानों को सावधान कर सकता है। अगर किसी सामुदायिक प्रयास में कमी रह गई है, तो तो अगली योजना बनाते समय उस कमी को दूर किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इस प्रकार असफलता भी गांव के लिए सिक्का माध्यम बन सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ मैं से हम की ओर की बात करें तो मजबूत गांव बनाने के लिए सबसे जरूरी बदलाव सोच में होना चाहिए। हमें मेरे घर, मेरे खेत, मेरी समस्या से आगे बढ़कर हमारा गांव, हमारे संसाधन और हमारी जिम्मेदारी की सोच विकसित करनी होगी। जब गांव का कोई रास्ता खराब होता है तो पानी की समस्या आती है या शिक्षा से जुड़ी कोई चुनौती सामने आती है तो उसे केवल किसी एक परिवार की समस्या मानने के बजाय सामूहिक समस्या समझना चाहिए। एक व्यक्ति की ताकत सीमित हो सकती है श्रोता साथियों, लेकिन समुदाय की सामूहिक शक्ति बहुत बड़ी होती है। मजबूत गांव का अर्थ परंपरा को छोड़ना नहीं बल्कि जरूरत इस बात की है कि स्थानीय ज्ञान, आधुनिक तकनीक को साथ लेकर चला जाए।
1: बिल्कुल,
0: बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, युवाओं की तकनीकी समझ मिलकर नए समाधान पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए पुराने जल स्रोतों की जानकारी बुजुर्गों के पास हो सकती है और उसकी स्थिति को डिजिटल माध्यम से दर्ज करने तथा संरक्षण की योजना बनाने में युवा मदद कर सकते हैं। यही तालमेल जागृति जी गांव को बदलते समय के साथ आगे बढ़ने की क्षमता देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, एक दूसरे से सीखने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर लोग अपनी जानकारी साझा करने से डरेंगे या दूसरों की बात को महत्व नहीं देंगे तो सामूहिक सीख संभव नहीं होगी। इसलिए गांव में संवाद, सम्मान और सहयोग का वातावरण बहुत जरूरी है। किसी की राय अलग हो सकती है श्रोता साथियों, उसकी बात भी सुनी जाए। अच्छे विचार को केवल इसलिए नकारा ना जाए कि वह किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया है। विचार व्यक्ति से बड़ा होता है। यदि विचार गांव के हित में है तो उसे स्वीकार करने में संकोच भी नहीं होना चाहिए।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, गांव को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम हर कार्यक्रम में आपको कहते हैं, कई बार गांव की सबसे बड़ी पूंजी स्वयं गांव के लोगों के पास मौजूद होती है। उनका ज्ञान, अनुभव, कौशल, श्रम और सहयोग की भावना। किसान किसान से सीखे, महिलाएं महिलाओं से सीखे, युवा बुजुर्गों के अनुभव से सीखे, बुजुर्ग युवाओं की तकनीक समझ से सीखे, बच्चे बड़ों से सीखते हुए अपनी जिज्ञासा से नई सोचते।
1: बिल्कुल,
0: गांव में ज्ञान की ऐसी श्रृंखला बन सकती है जो विकास को निरंतर आगे बढ़ाए। हमें एक ऐसा गांव बनाना है जहां कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखे बल्कि उसे समुदाय की ताकत बनाए, जहां सफलता सांझा हो, अनुभव सांझा हो, समस्याओं का समाधान मिलकर खोजा जाए और हर व्यक्ति जागृति जी दूसरे की प्रगति में अपना योगदान समझे। क्योंकि मजबूत गांव केवल पक्की सड़कों, बड़े भवनों, सुविधाओं से नहीं बनता। मजबूत गांव वह है जहां लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे के अनुभव का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज आवश्यकता इसी बात की है कि सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, मिलकर गांव को आगे बढ़ाएंगे भी। ज्ञान बनेगा गांव की शक्ति, सहयोग से आएगी समृद्धि, यानी कि श्रोताओं एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे का हाथ थामकर और सामूहिक प्रयासों से हम अपने गांव को आत्मनिर्भर, जागरूक, समृद्ध, मजबूत बना सकते हैं। यही मजबूत गांव और मजबूत समाज की सच्ची नींव है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी जैसा कि कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई है, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नू खवानू सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ है। कहते हैं श्रोता साथियों कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर हमारा मन ही परेशान हो, तनाव में हो या लगातार चिंता से घिरा हो तो इसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। मनीषा, हम अक्सर अपने शरीर की सेहत का ध्यान रखते हैं।
0: जी हाँ,
1: बुखार आए तो दवा लेते हैं, चोट लगे तो इलाज करवाते हैं, लेकिन मन थक जाता है, चिंता बढ़ जाती है, नींद ठीक नहीं आती या किसी बात को लेकर लगातार बेचैनी रहती है, तब हम कई बार इसे नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आज की हमारी चर्चा का विषय है मानसिक स्वास्थ्य, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोता साथियों, केवल शरीर का स्वस्थ होना ही पर्याप्त नहीं है, हमारे जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही महत्व है।
1: जी जी।
0: जब हमारा मन शांत, खुश और संतुलित रहता है अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन की कई सारी परेशानियां हैं, उनसे हम बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। अक्सर श्रोता साथियों, हम शरीर में होने वाली परेशानियों को तुरंत समझ लेते हैं। बुखार हो, दर्द हो, कमजोरी महसूस हो, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, जब मन में परेशानी हो, लगातार चिंता हो, किसी काम में मन न लगे या छोटी छोटी बातों पर बहुत तनाव महसूस हो, तब कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यही कारण है श्रोता साथियों कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। कहना चाहेंगे कि मन स्वस्थ होगा तो सोच है वो भी अच्छी होगी। सोच अच्छी होगी श्रोता साथियों, तो हमारे फैसले हैं वो अच्छे होंगे और जीवन को बेहतर तरीके से हम जी सकेंगे।
1: बिल्कुल मनीषा, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल यह नहीं है कि हमें कोई मानसिक बीमारी न हो। इसका संबंध हमारे सोचने, महसूस करने, परिस्थितियों से निपटने, दूसरों के साथ संबंध बनाने और रोजमर्रा की जिंदगी को संतुलित तरीके से जीने से भी है। हमारे जीवन में कभी खुशी आती है, कभी दुख, कभी काम आसानी से हो जाता है और कभी छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, ये भावनाएं सामान्य है, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। समस्या तब बन सकती है जब तनाव, उदासी, डर या चिंता लंबे समय तक बनी रहे और हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि मन और शरीर के संबंध की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तो इसका असर है वो हमारे शरीर पर भी पड़ सकता है। नींद खराब हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है और काम में मन है वो नहीं लग सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह श्रोता साथियों, जब शरीर लंबे समय तक अस्वस्थ रहता है, तो इसका

0: इसलिए केवल यह देख कर कि कोई व्यक्ति हंस रहा है ये मान लेना सही नहीं है कि वह अंदर से खुश है। हमें अपने परिवार और आसपास के लोगों के व्यवहार में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना चाहिए।
1: जी
0: अगर
1: हाँ।
0: कोई व्यक्ति पहले की तुलना में लगातार उदास रहने लगे, लोगों से दूरी बनाने लगे, छोटी छोटी बातों पर परेशान या चिड़चिड़ा रहने लगे, नींद या भूख में लगातार बदलाव आए या रोज के काम करने में परेशानी होने लगे, तो उससे प्यार से बात करना जरूरी है। उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय उसकी बात सुनना ज्यादा जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना अभी साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध की।
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: साथियों, हमारा शरीर और मन अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो हमारी नींद प्रभावित हो सकती है, भूख कम या ज्यादा हो सकती है, शरीर में थकान महसूस हो सकती है और रोजमर्रा के कामों में मन नहीं लग सकता। इसी तरह जब शरीर लगातार बीमार या कमजोर रहता है तब उसका असर हमारे मन पर भी पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए स्वास्थ्य की बात करते समय केवल शरीर की नहीं मन की सेहत की भी बात करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ व्यक्ति अपनी बात बिना डर के कह सके। अगर कोई बच्चा कहता है कि उसे स्कूल जाने में डर लगता है, कोई महिला कहती है कि वो बहुत परेशान है या कोई बुजुर्ग अकेलापन महसूस करता है तो उसकी बात तुरंत नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। कई बार हम कह देते हैं, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो, सबके जीवन में परेशानी होती है, ज्यादा सोचते हैं इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन ऐसी बातें व्यक्ति की परेशानी कम करने की बजाय उसे अकेला महसूस करा सकती है। इसके बजाय हम कह सकते हैं कि तुम परेशान हो तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। कभी कभी किसी की परेशानी पर तुरंत समाधान हमारे पास नहीं होता, लेकिन उसके बाद ध्यान से सुन लेना भी बहुत बड़ी मदद कर सकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि थोड़ा सा तनाव होता है श्रोता साथियों, वो कभी कभी हमें काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जब तनाव है वो लगातार बढ़ता जाता है तो हम देखते हैं अंजलि जी कि इससे हमारी जो रोज की जिंदगी होती है वो भी प्रभावित होने लगती है। तो श्रोता साथियों, ऐसे में हमें ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। लगातार चिंता, नींद में परेशानी आना, हर समय उदासी महसूस करना, किसी काम में मन न लगना या लोगों से दूरी बनाने जैसी परेशानियां श्रोता साथियों लंबे समय तक रहे तो उसे नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आपको बात करनी है, जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हो। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई लोग मन की परेशानी किसी को बताने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना हमारी कमजोरी नहीं है। जैसे शरीर में दर्द होने पर हमें इलाज लेते हैं, वैसे ही हमारे मन में अगर परेशानी है, अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारा मन है वो हल्का हो जाता है और वो भी हमारे लिए एक दवा की तरह ही काम करता है। परिवार का कोई सदस्य, दोस्त, शिक्षक, भरोसेमंद व्यक्ति हमारी बात सुन सकता है। जरूरत से ज्यादा श्रोता साथियों तनाव बढ़ रहा है तो हमें मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे भी हम सलाह ले सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, इसके लिए हमें पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधियां, किसी अपने से बात करना, अपने लिए समय निकालना और नशे से दूरी रखनी होगी। हमारे समाज में कई बार मानसिक परेशानी के बारे में बात करने में लोग झिझक महसूस करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी परेशानी बताई तो दूसरे क्या कहेंगे। लेकिन जिस तरह शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर से सलाह लेने में कोई शर्म नहीं है, उसी तरह मानसिक परेशानी होने पर स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मदद लेना भी सामान्य स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, अपनी परेशानी को पहचानना और समय पर सहायता लेना समझदारी है। सामुदायिक जीवन में हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारे गांव में पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र और समुदाय के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी यही सामुदायिक भावना जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से परेशान दिखाई दे रहा है तो उसका मजाक बनाने या उसके बारे में चर्चा करने के बजाय उससे सम्मान पूर्वक बात करें। विशेषकर बच्चों, किशोरों, महिलाओं और बुजुर्गों की भावनाओं को समझना जरूरी है। बच्चे हमेशा अपनी परेशानी शब्दों में नहीं बता पाते, उनके व्यवहार में बदलाव भी संकेत हो सकता है कि उन्हें किस बात की चिंता है। इसलिए बच्चों को केवल पढ़ाई या अनुशासन की बात न करके उनकी भावनाओं के बारे में पूछें। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, कोई बात परेशान तो नहीं कर रही है। ये सारी चीजें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: उनकी बात को बीच में काटे बिना हमें सुनना होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए श्रोता साथियों को छोटी मोटी आदतें हैं वो हमें अपनानी चाहिए। जैसे कि श्रोता साथियों, पर्याप्त और नियमित नींद हम ले सकते हैं, संतुलित भोजन कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार हमें शारीरिक गतिविधियां करनी है, परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करनी है, अपनी परेशानी को मन में दबाकर नहीं रखना है, किसी व्यक्ति से साझा कर दें या अपनी परेशानी को बताकर अपना मन हल्का कर लें। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि मोबाइल और सोशल मीडिया का संतुलित हमें इस्तेमाल करना है, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि अक्सर जो लोग होते हैं वो अपनी तुलना दूसरों से करके भी अपना मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब कर लेते हैं। अपने पसंद के काम के लिए श्रोता साथियों आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं। समस्या बड़ी लगने लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह भी आप ले सकते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम शरीर की तरह अपने मन की भी देखभाल करें साथियों। अपने मन को आराम दे, अपनी भावनाओं को समझे, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद ले। हमें अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए साथियों जहाँ हर व्यक्ति बिना डरे अपनी परेशानी बता सके। किसी की मानसिक परेशानी का मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी बात हमें सुननी चाहिए और जरूरत पड़ने पर हमें उसे सहायता भी देनी चाहिए।
0: जी हाँ मनीषा, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की हमारी बात का सार यही है कि स्वास्थ्य केवल शरीर के स्वस्थ होने का नाम नहीं है, मन की सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब मन शांत और संतुलित रहता है तो हम अपने परिवार के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं, अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी बेहतर होती है। लेकिन जीवन में परेशानी आना भी सामान्य है।
1: बिल्कुल,
0: हर समय खुश रहना जरूरी नहीं। दुखी होना, रोना, चिंता महसूस करना या कभी कभी थक जाना इंसानी भावनाएं हैं। जरूरी यह है कि जब परेशानी लंबे समय तक बनी रहे या हमारे जीवन को प्रभावित करने लगे तो उसे नजरअंदाज न करें। मन की बात मन में दबाकर रखना जरूरी नहीं, बात करें, सुने, समझें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। क्योंकि मन स्वस्थ होगा तो सोच स्वस्थ होगी और सोच स्वस्थ होगी तो जीवन स्वस्थ होगा और स्वस्थ मन से ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समुदाय का निर्माण होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे।
1: जी हाँ,
0: आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्र
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार।

हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।